धोनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: प्रार्थना अभवत्। इदानीम् अभ्याससमयः। आगच्छन्तु संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य सहायिकारूपेण मया सह मम सखी स्मिता भगिनी, ज्योति भगिनी च अस्ति। प्रथमं स्मिता भगिनी एकां कथां श्रावयति। कथायाः शीर्षकम् अस्ति मित्रं लघु अपि वरम्। शृण्वन्तु।
1: एकं वनम् अस्ति। वने एकः सिंहः निवसति। सिंहः गुहायां शयनं करोति। एकदा एकः मूषकः गुहां प्रविशति। सः सिंहस्य शरीरे इतस्ततः धावति। सिंहः कुपितः भवति। सः मूषकं निगृह्णाति। तदा मूषकः भीतः भवति। मूषकः सिंहं प्रार्थयते, भोः मृगराज, कृपया मां न खादतु, मम विमोचनं करोतु, अग्रे अहं भवतः सहायतां करिष्यामि इति। सिंहः हसति, वदति च, लघुमूषकः मम सहायतां करिष्यति, पश्यामि, इदानीं भवतः विमोचनं करोमि इति। सिंहः मूषकस्य विमोचनं करोति। एकदा एकः व्याधः जालं प्रसारयति। सिंहः जाले पतति। तदा सः उच्चैः गर्जति, बहिः आगमनार्थं प्रयत्नं करोति। तस्य गर्जनं मूषकः शृणोति। सः सिंहस्य समीपम् आगच्छति। जालं दन्तैः कर्तयति। सिंहः बन्धमुक्तः भवति। मित्रं लघु अपि वरम्।
0: कथाम् अवगतवन्तः खलु? कथायाः बोधः अस्ति मित्रं लघु अपि वरम्। छोटा मित्र भी हो मगर वो श्रेष्ठ होता है। अब हम यही कथा भूतकाल में बताएंगे। तो अब हम इस कथा को भूतकाल में बताएंगे। ज्योति भगिनी एक एक वाक्य पढ़ती जाएगी और मैं उस वाक्य को भूतकाल में कहूंगी। देखिए, आप वर्तमान काल भी जानते हैं और भूतकाल भी जानते हैं। बताइए कौन सी कथा आपको अच्छी लगती है। आगच्छन्तु शृण्वन्तु।
2: एकं वनम् अस्ति।
0: एकं वनम् आसीत्।
2: वने एकः सिंहः निवसति।
0: वने एकः सिंहः निवसति स्म।
2: सिंहः गुहायां शयनं करोति।
0: सिंहः गुहायां शयनं करोति स्म।
2: एकदा एकः मूषकः गुहां प्रविशति।
0: एकदा एकः मूषकः गुहां प्रविष्टवान्।
2: सः सिंहस्य शरीरे इतस्ततः धावति।
0: सः सिंहस्य शरीरे इतस्ततः धावितवान्।
2: सिंहः कुपितः भवति।
0: सिंहः कुपितः अभवत्।
2: सः मूषकं निगृह्णाति।
0: सः मूषकं गृहीतवान्।
2: तदा मूषकः भीतः भवति।
0: तदा मूषकः भीतः अभवत्।
2: मूषकः सिंहं प्रार्थयते।
0: मूषकः सिंहं प्रार्थितवान्। किमिति? भो मृगराज, कृपया मां मा खादतु, मम विमोचनं करोतु, अग्रे अहं भवतः सहायतां करिष्यामि इति।
2: सिंहः हसति, वदति च।
0: सिंहः हसितवान्, उक्तवान् च।
2: लघुमूषकः मम सहायतां करिष्यति, पश्यामि, इदानीं भवतः विमोचनं करोमि इति।
0: सिंहः मूषकस्य विमोचनं कृतवान्।
2: एकदा एकः व्याधः जालं प्रसारयति।
0: एकदा एकः व्याधः जालं प्रसारितवान्।
2: सिंहः जाले पतति।
0: सिंहः जाले पतितवान्।
2: तदा सः उच्चैः गर्जति।
0: तदा सः उच्चैः गर्जितवान्।
2: बहिः आगमनार्थं प्रयत्नं करोति।
0: बहिः आगमनार्थं प्रयत्नं कृतवान्।
2: तस्य गर्जनं मूषकः शृणोति।
0: तस्य गर्जनं मूषकः श्रुतवान्।
2: सः सिंहस्य समीपम् आगच्छति।
0: सः सिंहस्य समीपम् आगतवान्।
2: जालं दन्तैः कर्तयति।
0: जालं दन्तैः कर्तितवान्।
2: सिंहः बन्धमुक्तः भवति।
0: सिंहः बन्धमुक्तः अभवत्। मित्रं लघु अपि वरम्। कथां ज्ञातवन्तः वा? अब एक सुभाषित सुनते हैं जिसमें उत्तम मित्र के लक्षण बताए हैं। संस्कृत भाषा में बहुत सारे सुभाषित है, बहुत सुंदर सुंदर सुभाषित है। यहाँ आप देखिए बिल्कुल छोटे से सुभाषित में मित्र के लक्षण कितने अच्छे तरह से बताए हैं। पहले सुनिए, बाद में हम अर्थ देखते हैं। पापा निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति, आपदगतम च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। तो सन्मित्र लक्षणम क्या क्या है, हाँ, अच्छे मित्र के लक्षण क्या क्या है, तो देखते हैं। पहला है पापात निवारयति, यानी पाप से वह दूर करता है, पाप करने से रोकता है। योजयते हिताय, अच्छे काम में आपकी योजना करता है, अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है। गुह्यम निगुहति, अगर कोई दोष है, कुछ गुप्त रखना है, तो वो गुप्त बात रखने में बहुत समर्थ होता है। गुणान प्रकटीकरोति, मगर अगर गुण है तो गुणों के बारे में वह प्रशंसा करता है, सबको आपके गुण बताता है। आपदगतम च न जहाति, अगर मित्र संकट में है तो वह उसे संकट में आपत्ति में कभी नहीं छोड़ के जाता। ददाति काले, जब जरूरत है तब अवश्य आके मदद करता है। ये सन्मित्र के लक्षण है। सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः, महात्मानः, महात्मा लोग मित्र के, अच्छे मित्र के लक्षण ऐसे बताते हैं। तो आज हमने सन्मित्र के लक्षण देखे। अब अंत में सवाल पूछते हैं। आज का सवाल है, क्या आप किसी के अच्छे दोस्त है? उत्तर जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। अभ्यास अभवत। इदानीं रामरक्षा स्तोत्र पठनम्। श्लोक संख्या 23 तः 30 पर्यन्तम्।
3: श्री गणेशाय नमः।
4: श्री गणेशाय नमः।
3: वेदांत वेद्यो यज्ञेश।
4: वेदांत वेद्यो यज्ञेश।
3: पुराण पुरुषोत्तमः।
4: पुराण पुरुषोत्तमः।
3: जानकी वल्लभ श्रीमान।
4: जानकी वल्लभ श्रीमान।
3: अप्रमेय पराक्रमः।
4: अप्रमेय पराक्रमः।
3: इत्येतानि जपन् नित्यम्।
4: इत्येतानि जपन् नित्यम्।
3: मद्भक्त श्रद्धयान्वितः।
4: मद्भक्त श्रद्धयान्वितः।
3: अश्वमेधाधिकं पुण्यम्।
4: अश्वमेधाधिकं पुण्यम्।
3: संप्राप्नोति न संशयः।
4: संप्राप्नोति न संशयः।
3: रामं दूर्वादलश्यामम्।
4: रामं दूर्वादलश्यामम्।
3: पद्माक्षं पीतवाससम्।
4: पद्माक्षं पीतवाससम्।
3: स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्।
4: स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्।
3: नते संसारिणो नरः।
4: नते संसारिणो नरः।
3: रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरम्।
4: रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरम्।
3: सीतापतिं सुन्दरम्।
4: सीतापतिं सुन्दरम्।
3: काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं।
4: काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं।
3: विप्रप्रियं धार्मिकम्।
4: विप्रप्रियं धार्मिकम्।
3: राजेन्द्रं सत्यसन्धम्।
4: राजेन्द्रं सत्यसन्धम्।
3: दशरथतनयम्।
4: दशरथतनयम्।
3: श्यामलं शान्तमूर्तिं।
4: श्यामलं शान्तमूर्तिं।
3: वन्दे लोकाभिरामम्।
4: वन्दे लोकाभिरामम्।
3: रघुकुलतिलकम्।
4: रघुकुलतिलकम्।
3: राघवं रावणारिं।
4: राघवं रावणारिं।
3: रामाय रामभद्राय।
4: रामाय रामभद्राय।
3: रामचन्द्राय वेधसे।
4: रामचन्द्राय वेधसे।
3: रघुनाथाय नाथाय।
4: रघुनाथाय नाथाय।
3: सीताय पतये नमः।
4: सीताय पतये नमः।
3: श्री राम राम रघुनन्दन राम राम।
4: श्री राम राम रघुनन्दन राम राम।
3: श्री राम राम भरताग्रज राम राम।
4: श्री राम राम भरताग्रज राम राम।
3: श्री राम राम रणकर्कश राम राम।
4: श्री राम राम रणकर्कश राम राम।
3: श्री राम राम शरणं भव राम राम।
4: श्री राम राम शरणं भव राम राम।
3: श्री रामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि।
4: श्री रामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि।
3: श्री रामचन्द्र चरणौ वचसा गृणामि।
4: श्री रामचन्द्र चरणौ वचसा गृणामि।
3: श्री रामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि।
4: श्री राम रामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि।
3: श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये।
4: श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये।
3: माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः।
4: माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः।
3: स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः।
4: स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः।
3: सर्वस्वं मे रामचन्द्रोदयालुर्।
4: सर्वस्वं मे रामचन्द्रोदयालुर्।
3: नान्यं जाने नैव जाने न जाने।
4: नान्यं जाने नैव जाने न जाने।
0: स्तोत्र पठनम अभवत। आप जरूर बताइए स्तोत्र पठनम आपको कैसा लगता है। आज की कथा आपके समझ में आई होगी। वो कथा आपने दो बार सुनी, एक बार वर्तमान काल में और एक बार भूत काल में। उसके बाद हमने अच्छे मित्र के लक्षण भी सुने। अच्छे मित्र के लक्षण बताने वाला सुभाषित सुना। अपना भाषा पठन बहुत अच्छा चल रहा है। क्या आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं? जरूर जरूर बताइए। श्वः पुनर्मिलामः। इदानीं शांति मंत्रेण कार्यक्रमस्य समाप्तिः भवति। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वेणू धोनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्युनिंग आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: सक्रियता का महत्व. मान लीजिए अच्छे खासे कंपनी का महंगा मोबाइल हो, बैटरी भी पूरी चार्ज हो, लेकिन पैसे डले ना हो, तो क्या मोबाइल चलेगा? नहीं ना. जैसे पैसे डलवाने के बाद सिम कार्ड एक्टिव यानी सक्रिय हो, तब बात करने की बात बने, नहीं तो मोबाइल मानो जैसे चुने की खाली डिबिया है. एक्टिवनेस यानी सक्रियता जिंदगी की गाड़ी चलाने में बड़ी अहम भूमिका निभाता है. कर्मफल की तृप्ति और सफलता का स्वाद चखाने वाला अनमोल गुण है सक्रियता. सक्रियता अर्थात कला गुण विशेषताओं को निरंतर कार्य में लगाना तथा किसी संस्था संगठन के कार्यों में लगातार उत्साह से हिस्सा लेते रहना, साधन सामग्री को नियमित उपयोग करते रहना, आलस की चादर फेंक कर रोजमर्रा के काम फुर्ती से करते रहना भी सक्रियता ही है. मशीन या यंत्र को चलाए नहीं तो पड़े पड़े उनके कल पुर्जों में जंग लग जाती है, लेकिन यंत्रों को सक्रिय रख तेल पानी करने से उनकी उम्र बढ़ जाती है और उनसे उत्पादन भी अधिक मिलता है. मन बुद्धि को रचनात्मक कार्य में सक्रिय करने से सुस्ती और आलस कोसों दूर भागते हैं. शरीर के अंगों को कार्य में न लगाए तो चर्बी बढ़ती है, जिसे मोटापा बीमारी को बुलाता है. किंतु जो स्वयं के छोटे मोटे काम स्वयं करता है, उसकी एक्टिवनेस यानी सक्रियता बरकरार रहती है, जो काम में चपलता और तेजी लाती है. सक्रियता उमंग के नए पर देती है और साथ साथ ताजगी और गर्माहट भी बनी रहती है. किसी सार्वजनिक संगठनों में सक्रिय रहने से तरक्की के साथ आगे बढ़ने के नए अवसर भी मिलते हैं. जो बिना नाम मान शान की इच्छा के सक्रिय भूमिका निभाता है, वो संगठन संस्था का केंद्र बिंदु एवं आधार बन जाता है. लोकतंत्र में पार्टी को जिताने में सक्रिय कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. सूर्य चांद तारागण की गतिशील सक्रियता ही जीवन चक्र को चलाती है. खेल में सक्रियता खिलाड़ी को आक्रामक बनाए रखती है. सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को व्यायाम कसरत से एक्टिव यानी सक्रिय रखा जाता है, ताकि वे शत्रु के अचानक आक्रमण को मुंह तोड़ जवाब दे सके. अतः सक्रियता को अपनाइए और ऊर्जा की वृद्धि कर यश के धनी बनिए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं.

0: वेणुधुनी 90.4 एफएम केएलई गणसूबे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: 18 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
3: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
4: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधन परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
5: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
6: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई है। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
3: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
6: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
7: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
6: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
8: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल रेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मॉनसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
6: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसु।
10: माँ बनने में हो रही है देर, इंतजार है खुशखबरी का। देयर इज वन नेम यू कैन ट्रस्ट, केली फर्टिलिटी सेंटर, विद साइंस, सोल एंड सेंसिटिविटी। जिंदगी को दो नई शुरुआत केली IVF के साथ। आज ही विजिट करें केली फर्टिलिटी सेंटर, OPD नंबर 97, शरावती सेकेंड फ्लोर, केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल एंड MRC बेगावी। फोन नंबर 08312551530 एंड 24733777 एक्सटेंशन 1530।

हेलो नमस्कार सलाम आदाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम चकाचक फर्स्ट क्लास और जिंदाबाद होंगे। स्वागत है आपका आप सभी के पसंदीदा शो बी रिलैक्स में, और आप सुन रहे हैं बेलगावी का सबसे पहला और बड़ा रेडियो स्टेशन वेणु ध्वनि 90.4 के एलई कनसु। और मैं हूं आप सभी का प्यारा दुलारा रेडियो दोस्त यानी की और जय आयुष। दोस्तों आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और बस फिर वो बात ना करने की वजह से धीरे धीरे धीरे धीरे परेशान होते रहता है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हीलिंग के ऊपर, जिसका मतलब है किसी चीज से उभरना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज का ये टॉपिक बड़ा ही डीप थॉट होने वाला है, तो एकदम गौर से सुनिएगा। बिकॉज इन दिस रेडियो एपिसोड वी विल डाइव इनटू द मल्टीफेसेटेड डायमेंशन ऑफ हीलिंग, एक्सप्लोरिंग हाउ इट इंटरसेक्ट्स विद साइंस, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो सुनते रहिए मेरे साथ हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसुपर।

0: अब एयर कंडीशन क्लासरूम्स में वर्ल्ड क्लास लैब्स के साथ KLE कॉलेज ऑफ फार्मेसी एयरपोर्ट रोड
1: KLE टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बेलागामी एडमिशंस ओपन फॉर 2026-27 डॉक्टर एम एस शेषगिरी कैंपस बेलागामी KCET कोड E036 मोर देन 500 प्लेसमेंट ऑफर्स वर रिसीव्ड इन 2025-26 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड अ हाईएस्ट एनुअल पैकेज ऑफ अप टू 16 लाख पर एनम द यूनिवर्सिटी हैज 150 प्लस एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स एंड 50 प्लस डॉक्टरल डिग्री होल्डर्स वेल इक्विप्ड लर्निंग फैक्ट्री टिंकरिंग लैब एंड वाईफाई एनेबल्ड हॉस्टल फैसिलिटीज आर अवेलेबल यूजी कोर्सेस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग सिविल engineering, computer science and engineering, AI, electronics and communication engineering, electrical and electronics engineering, mechanical engineering, BCA, PG courses, MCA, MBA and M.Tech in structural engineering, civil. 60 plus companies including Infosys, Juniper Networks, HPE, Federal Bank and Bosch visit the campus for recruitment. For more information, call 0831-244-0322 or visit www.kletech.ac.in.

हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो बी रिलैक्स। आप ट्यून कर चुके हैं वेनु ध्वनि 90.4 के एल ई कनसु और मैं आरजे आयुष आपके साथ बना हुआ हूँ। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं हीलिंग के ऊपर, जिसका मतलब है नर्चरिंग माइंड बॉडी एंड सोल, और या उनको कंडीशन करना, उनको अच्छी हालत में रखना। दोस्तों, ऐसी दुनिया में जहाँ हर रोज हम इंजर्ड या पनिश्ड फील करते हैं या लाइफ की भाग दौड़ में कहीं गुम हो जाते हैं, वहीं ये टर्म या ये कॉन्सेप्ट आता है विच इज कॉल्ड हीलिंग, विच टेक्स अस टू प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस। हीलिंग का मतलब सिर्फ शरीर के घाव भरना या घाव भर जाना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है हमारे माइंड और सोल का उभरना किसी सिचुएशन से या किसी प्रॉब्लम से। दोस्तों, हीलिंग ऐसा शब्द है जिससे हर इंसान गुजरता है। कुछ हील हो जाते हैं तो कुछ उसी सिचुएशंस में साइलेंट बैटल्स फाइट करते रहते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से हैं या फिर हीलिंग की प्रोसेस को जानना चाहते हैं तो आज का ये एपिसोड आप ही के लिए है। तो दोस्तों, जिंदगी में काफी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी 100% खुश नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है और कुछ ना कुछ मलाल रह जाता है। कई बार हम हर्ट भी होते हैं जिससे हमारे फिजिकल घाव तो भर जाते हैं पर अंदर कई घाव रह जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मलाल रह जाते हैं जिनका हील होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए जानेंगे आज थोड़ी और गहराई में और साथ ही आपको सुनाएंगे कुछ जबरदस्त गाने। तो सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे शो और आपके फेवरेट शो में, जहां आपने ट्यून किया है वेनु धोनी 90.4 KLE कनसू और हमारा शो बी रिलैक्स चल रहा है। मैं आरजे आयुष आपके साथ हमेशा बना हुआ हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, लाइफ बहुत बड़ी है और जिंदगी बड़ी होती है तो उसमें प्रॉब्लम्स भी होते हैं। प्रॉब्लम्स आना सामान्य है भैया, ऐसी सिचुएशंस में आप कभी ना कभी पड़ ही जाएंगे, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन जितना जरूरी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उतना ही जरूरी है उन इंसिडेंट से हील होना। दोस्तों, हीलिंग कई तरह की हो सकती है। जैसे पहले मैं आपको बताता हूँ फिजिकल हीलिंग के बारे में। फिजिकल हीलिंग इज द मोस्ट टेंजिबल फॉर्म ऑफ रिकवरी। इट इन्वॉल्व्स अ रिपेयर ऑफ बॉडी इंजरीज एंड अलाइनमेंट्स, अलाउइंग अस टू रीजन आवर स्ट्रेंथ एंड वाइटैलिटी। दोस्तों, मॉडर्न मेडिसिन और टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है, जहां बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आ गई है, थेरेपीज आ गई है, हर चीज सर्जरीज अवेलेबल है, जिससे हम काफी हद तक ठीक हो जाते हैं, हमारी बॉडी हील हो जाती है फिजिकली। कुछ सिनेरियो ऐसे भी है जिनमें बॉडी तो हील हो जाती है लेकिन भैया दिल और दिमाग नहीं हो पाते। दिल और दिमाग उसी जगह अटक कर रह जाते हैं और उसकी हीलिंग होना बहुत जरूरी है। करेंगे बात उन्हीं के बारे में आफ्टर सम सुपर हिट सॉन्ग्स, तो सुनते रहिए हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू पर।

Hello, welcome back, ladies and gentlemen, listeners of all the ages to your favorite show, Be Relaxed, only on Venu Dhwani 90.4 KLE Kanasu. दोस्तों जैसे कि मैंने आपको फिजिकल हीलिंग के बारे में बताया, उसके बाद आती है मेंटल और इमोशनल हीलिंग, जिससे हील होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बिकॉज यू फाइट योर ओन बैटल्स. ये ऐसे घाव होते हैं जो दिखते तो नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर दबे होते हैं, चुभते हैं. स्ट्रेस, ट्रॉमा, एंग्जाइटी कैन इन्फ्लिक्ट वाउंड्स दैट आर इनविजिबल टू द नेकेड आईज. येट जस्ट एज प्रोफाउंड इन देयर इंपैक्ट, साइकोलॉजी हीलिंग से हील करने के लिए उसको पहले एड्रेस करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा थ्रू थेरेपीज, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एंड सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस. इट्स अबाउट कटिंग एवरी थॉट एंड फाइंड दैट इनर पीस, जिससे हमारी लाइफ सॉर्ट होती है और हमारा वो अंदर का बोझ धीरे धीरे धीरे धीरे हल्का होते चले जाता है. दोस्तों अगर आप भी ऐसी कोई सिचुएशंस में हो तो अपने आप को थोड़ा सा वक्त दीजिए. जैसे अच्छा वक्त गुजर जाता है वैसे ही बुरा वक्त भी धीरे धीरे निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा. जैसे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करने के लिए मैं सुनाऊंगा आपको कुछ जबरदस्त गाने, तो आपको क्या करना है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सुनते रहना है वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु आरजे आयुष के साथ.

हेलो दोस्तों, बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और थैंक यू हमारे शो को इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं आरजे आयुष आपके साथ बना हुआ हूं और आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। दोस्तों, कई लोग हील होते हैं स्पिरिचुअलिटी से। दोस्तों, स्पिरिचुअल हीलिंग में आप कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव एनर्जी से, आप अपना फेथ दिखाते हैं और ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जिससे आपको सुकून मिले, अच्छा लगे, हीलिंग हो। इट्स अबाउट फाइंडिंग मीनिंग इन सफरिंग, लर्निंग फ्रॉम चैलेंजेस एंड अल्टीमेटली इवॉल्विंग इनटू अ मोर एनलाइटेंड वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। दोस्तों, कई बार हीलिंग होने के लिए माइंड और बॉडी का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। किसी सिचुएशन से निकलने के लिए आपको आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेगी जिससे आपका ध्यान बढ़ जाए और आप धीरे धीरे धीरे धीरे चीजों से हील होने लग जाए, उनसे उभरने लग जाए। जिसे कहते हैं हील होने में म्यूजिक भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं सुनाता हूँ आपको कुछ जबरदस्त गाने, तो सुनते रहिए हमारे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

Hello, welcome back one more time, and you have tuned into Belgium's first radio station, Venu Dhoni 90.4 KLE Kanasu, and you're listening to our show, Be Relaxed. दोस्तों चलिए कुछ strategies की बात मैं करता हूँ, जिससे आप अपने routines में involve कर सकते हैं, heal होने के लिए try कर सकते हैं. पहली, healing through art and expression. जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया music भी एक role play करता है आपको heal करने में, या एक art आप चुन सकते हैं जिसमें आप मन लगाएंगे तो हो सकता है आपका माइंड कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो और आप उस हीलिंग से धीरे धीरे निकल जाए. सेकंड, नेचर्स हीलिंग पावर. दोस्तों नेचर हैज अ प्रोफाउंड एबिलिटी टू हील. स्पेंडिंग टाइम इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट कैन रिड्यूस स्ट्रेस, बूस्ट योर मूड एंड प्रमोट फिजिकल हीलिंग. दोस्तों जब आप नेचर में होते हो, फ्रेश एयर में होते हो, शाइनिंग सनलाइट, हर वो चीज जो आपको अच्छा महसूस करवाती है, वो आपको एक सुकून देती है जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी हील होती चली जाती है. तीसरा, हीलिंग थ्रू फिटनेस एंड न्यूट्रिशन. दोस्तों एक बैलेंस डाइट विद अ प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारी ओवरऑल बॉडी को पुरानी डिसीज से भी हील कर सकता है, साथ ही इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस से भी कम होता है. वहीं अगर आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, या आपने भी देखा होगा कि आज किसी का ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के बाद हर इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिम ही ज्वाइन करता है. जरूरी नहीं है कि वो जिम ज्वाइन करे, बट मोस्ट ऑफ द लोगों की बात मैं कर रहा हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ, वो लोग जिम ही ज्वाइन करते हैं. जिसका मतलब यह है कि फिटनेस भी आपको किसी दौर से, किसी सिचुएशन से उभरने में धीरे धीरे मदद करती है. चलिए दोस्तों एक दो टेक्निक्स और मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट आफ्टर सम सुपर हिट सॉन्ग्स. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू वेनू ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर.

0: क्या हुआ, गाओ ना।
1: नहीं, आज मूड नहीं है।
0: मूड नहीं? अरे रियाज नहीं करना है क्या?
1: गाना मेरे बस की बात नहीं है।
0: तो फिर यही गाओ।
1: क्या?
0: गाना मेरे बस की बात नहीं। अरे हंसो मत।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके पसंदीदा शो भी रिलैक्स में। और आप सुन रहे हैं वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु विद आरजे आयुष। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हीलिंग्स के बारे में। दोस्तों टेक्निक्स जैसे हीलिंग विद टाइम, वक्त एक बहुत बड़ा टीचर होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, जब अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरे वक्त की क्या मजाल की वो आपकी जिंदगी में टिक जाए, तो वो भी धीरे धीरे गुजर जाएगा और आपका मूड एकदम खुशम खुश यानी हैप्पी हैप्पी हो जाएगा दोस्तों। और आप चाहे तो अपने विचार या थॉट्स या सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं उसके बारे में आप अपने किसी दोस्त से शेयर कर सकते हैं, किसी करीबी इंसान से शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका जो दिल का बोझ होगा वो बट जाएगा। कहते हैं ना कि दुख और सुख बांटने से ही बढ़ता है, तो अगर आपको कोई दुख है तो वो प्लीज कृपया अपने किसी दोस्त से, किसी करीबी आदमी से बांटे, किसी रिश्तेदार से बांटे, किसी दोस्त से बांटे, तो आपका बोझ बहुत हद तक हल्का हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जो है हम अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं कुछ एंटरटेनमेंट की तरफ और सुनाते हैं आपको एकदम धमाकेदार गाने। तो सुनते रहिए हमारे साथ वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

हेलो दोस्तों, क्या बात है, स्वागत है, आइए आइए, आप आए, बाहर आई, फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, स्वागत है आपका एक बार फिर आप सभी के पसंदीदा शो बी रिलैक्स में। और आप सुन रहे हैं बेलगम का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनासू। देखिए दोस्तों, हील होना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है, हम इसे मुश्किल बना देते हैं इसको इग्नोर करके या ध्यान ना देके। कई बार ऐसा होता है कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर हो जाता है जिसे रोक पाना हमारे हाथ में भी नहीं होता, और ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जो हमारे दिलो दिमाग पर एक बहुत ही गहरा सदमा या असर डाल देती है। दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि कितना वक्त लगता है उन चीजों को एक्सेप्ट करने में, लेकिन उससे निकलने में। सोचिए, अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या मैं रियली ये डिजर्व करता हूँ। वो क्वेश्चन ही आपको हील होने में बहुत मदद करेगा। इफ आई हैव अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, डू आई हैव अ सॉल्यूशन ऑफ इट, पूछिए ये खुद को, क्या मेरे पास प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? अगर सॉल्यूशन है तो व्हाई वरी, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है देन व्हाई वरी, यू हैव टू गो थ्रू दिस। टाइम धीरे धीरे निकल जाएगा और अब धीरे धीरे हील होने चले जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को वक्त दे, वक्त सबसे बड़ा टीचर होता है। मैंने कहीं पर एक कोट पढ़ा था जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कोट ये है कि इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल देन कीप वॉकिंग, व्हाई विल यू स्टॉप इन अ हेल, करेक्ट नो? जिसका मतलब है कि अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल है, तो परेशान ना होइए, वक्त दीजिए, टाइम दीजिए, और आप उस सिचुएशन को पार कर लेंगे और वापिस आपकी जिंदगी एकदम नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ये डीप एपिसोड पसंद आया होगा। मैं आपसे जल्द मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए अपना प्यार हमेशा बनाए रखे हमारे शो बी रिलैक्स पे, और सुनते रहिए हमारा रेडियो स्टेशन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनासू, आरजे आयुष के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, शब्बा खैर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

0: रे,
1: जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

पुणी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

मधुबनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है यादों के बारात। हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धूली 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रंगधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: या

0: प्यारे,
1: जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

मुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 की LE कनसू पे आप ट्यून है। यादव के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसोपे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रंगधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।